0: रेडियो टाइगर 99.2 MHz नामै काफी छ।
1: जीतपुर वाले यह साल तो निश्चिंत हो गए।
2: हाँ, तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागत था। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
1: हाँ, तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
3: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
5: लो आयो, क्या आयो, क्या आयो,
6: वही ना बागे आयो थे। लो आयो आयो बंद क्या आयो?
5: वो तो नहीं, रेडियो टाइगर आयो।
0: यो हो रेडियो टाइगर 99.2 MHz गर्जन स सधैं बाघ झैं। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम।
7: यति बेला बिहानको 9 बजेको छ।

0: मैं क्या कह रहा था, सुन।
1: मुझको पता है तेरा मन है बड़ा, तभी फ्लोर पे तेरी बेड में हूँ खड़ा। ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला, थोड़ा पैर उठा सानू नच के बगा।

हमारी बड़ी होती है ऐसी बड़ी की पीछे तो करती है ऐसे पैसे बने ही बनता जो देखा तुम सपनों में अच्छे से तो देख जो आगे आपका बने लगे यहाँ क्लियर अब करना कोई क्लियर आज बैठे खुल के देखी।

चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे जिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में।

प्रिय मैग्र कविला हुँक जय मसी ओ नमस्कार म अपना हुकन के सामु फे महात्मा प्रसाद चौधरी आगे लाग्नु आज हाम्रा व्यवस्थापक कना शीर्षकमा वचन हेर जाइ पहिलो कोरन्थी चार अध्यायमा परमेश्वरमा विश्वास योग्यता बारेमा बात बटाइल बा ओ परमेश्वर कसिका हमारमा विश्वास गर्थ कना बात फे बटाइल बा पहिलो कोरन्थी चार अध्याय कि एक पदमा सिका कहत पुरम हमन परमेश्वरका ख्रीष्टका सेवक सम्झ पर्था हमन परमेश्वरका रहस्य बात प्रकट गर्न जिम्मा देगेल बा असिन काममा जिम्मा पाइल सेवक विश्वास योग्य हुई पर्था ऊ रहस्यक बात चाहिँ का हुई जुन यहाँ बताइल बा परमेश्वरका मुक्तिक बात जुन एक समयमा हुईकन बताइल बा यी चाहिँ एकदम रहस्यक बात हो तर आमिन सम्मै परमेश्वरका योजना यहुदी मनै हुन बीचमा अही जे मसिहा हुई त कहिक बताइल बा जे सारा मनैनाको डार करता रही ज्याकर नाउ येशु रही कहिक बताइल रहा यी येशु जे क्रुसमा गैला ओ दुःख भोगला उमुला उहाँ आफन जीवन अर्पण कैला ताकि जे उहाँमा विश्वास गरी ऊ अनन्त जीवन पाइसे जब अपना परमेश्वरमा आइबी अपना सारा पाप उहाँमा क्षमा हुई उहाँमा ऐना बार अपना पश्चाताप कैना कैक कठी अपना जीवनमा कैला पापमा पश्चाताप गर्बी औ अपना जीना जीवन से अपना लौटबी अपना कैला सारा खराब काम छोड़बी अपना जीवन का प्रभु कैक ख्रीस्त मा आपन जीवनमा बलैबी ओ मुक्तिदाता कहिके स्वीकार गर्बी उहाँमा लौ जीवन जिना कहिके कवि कलसे अपना उहाँमा मुक्ति पाइबी यी चाहिँ एकदम भार रहस्यक बात आज संसारमा ध्यार मनै उक्रबाट जे यी बाटा ख्रीष्ट येशु दोस्रो आगमन सम यी योजना हा जान नै पाइ ओ आप यी बात हा उहाँमा विश्वास गरल मनै उक्र बोक्क नेङ्ठ ओ यी बात अब कौनो मेरिक तरिका से नुकाका नै धैगिल हो आब हाम्रा यी बात हा जत्रा ध्यार मनै हुकन फे बताइ सक्बी यी बाटक मध्यनजर गर्ती यी बातका निचोड यी हो कि जे रहस्यक बातमा इच्छा जनाइल बा ऊ चाहिँ विश्वास योग्य बन्न बारेमा प्रमाणित गरही पर्न बा ओही बात हाम्रा विचार गरी कहिक मै कह चाह कि ख्रीष्ट एक विश्वासी हुइला कोर्से अथवा ख्रीष्टका एक विश्वासी हुइला कोर्से हाम्रा हाम्रो विश्वास उहाँमा कसिका देखाइ सक्बी उहाँमा हाम्रो विश्वास कसिका प्रमाणित गर सक्बी बात हम देखाइला हमरा ध्यार तरीका से कह सकती पहिल बात चाहिए हमार व्यक्तिगत नैतिकता से दिखाई सकती जसंग हमरा बताइल रही कि जब हमरा ख्रीस्ट में विश्वास करती कल से हमरा हमार पापी जीवन छोड़ती और हमरा परमेश्वर में मदद जीवन का अभ्यास करती ख्रीस्ट हमार लाग ज्या कैला वामा वाकर लाग धन्यवादी बनती और मन होकर एकदम ईर्ष्या कर था और मन होकर एकदम ईश्वरी अभिभावक बैठा जुन महत्वपूर्ण रहा हमार विश्वास हमार लड़का बच्चन में सर थी ओकरा लड़का बच्चन में फिर ख्रीष्ट येशु संग नेगाई नेंठी कना बाटम हमरा विश्वास तर थी ओकरा विश्वासी नक लाग ई बात एकदम महत्वपूर्ण बात हो और विश्वासी हुँ सोचते कि परमेश्वर में विश्वास योग्य होने बात चाहिँ एकदम महत्वपूर्ण बात हो जब ये बात वहाँ वचन अध्ययन का संदर्भ में था हमरा एक विद्यार्थी ऐसा खुलक हो का करे कि ये चाहे चेला हुई न अर्थ चाहिए हो येशु हाँ पछ्याल पहले मने हुकरा चेलाओ हुकरा हुई था ओ उहर से आज चेला हुकरा ओ मने हुकरा हुई था जे वहाँ वचन अध्ययन मनन वहाँ के बारे में जाना खोजना वहाँ के बारे में वहाँ बुद्धि में वहाँ जस्ता बना खोजना चाहिए ओ जे ख्रीस्ट का सुसमाचार हाँ सुनाई ख्वादत ओ ख्रीस्ट का गवाही हाँ दिहक ख्वादत ऊ चाहे चेला ई काम चाहे येशु हमारे जीवन में हुआ कहीं वहाँ चाहता वहाँ मट्टी 28 अध्याय में बताइल बात हमारे जीवन में हुआ कहीं वहाँ चाहता कि हाम्रा सारा जातिक मने हुँग्रा चेला बनाइकन उहाँकी इच्छा हो वर्ष यी सब डगर चाहिँ उहाँमा विश्वास योग्य हुइन डगर तर यी मध्ये कौनो फे बाधाको रूपमा नै हो यी सक्कु काम करल बा ज्याहुला से फे मै आज विश्वास योग्य और भागका बारेमा बात बतोइ और भौतिक चाजमा हाम्रा विश्वास योग्यता हाँ कसिका काम कर सिक्जाइ कना बात हामन दिहल बा जुन चाज हमन आशिष का रूप में दिहल ऊ चाजक साथ हमरा का करती हमरा फाइल पैसा हाँ हमरा कसी का खर्चा करती परमेश्वर में विश्वास योग्य होना हो वहाँ से पहला आशीष में हमरा विश्वास योग्य होना ये एकदम आधारभूत बात वहाँ देलक चाज हम हमरा कसी का खर्चा करना फजूल खर्चा नहीं कहना और परमेश्वर में महीन देलक चाज हमें एकदम होशियारी के साथ प्रयोग कहना हो कि ताकि हमरा परमेश्वर का महिमा लाग वहाँ राज्य के लाग खर्चा कर सके और मेरे से कहा बेला हमरा हमार पैसा से परमेश्वर का आराधना करा पड़ता जब हमरा कौनो चार्ज या रुपया पैसा हाँ प्रयोग करती हमरा हमार फायदा के लागना ही हमार मजा कपड़ा के लागना ही हमार एस आराम के जीवन के लागना ही तर हमार भौतिक चार्ज चाह आर्थिक चार्ज से परमेश्वर का राज्य में ध्यान आत्मा है जीतक लाग प्रयोग करा पड़ता ये काम चाहिए एक सेवक का काम हो
एक सेवक असीम काम गर्छ ओभरसे यी बारेमा एकछि विचार गरी रुपियाँ पैसा हमन एकदम चाहना चाज हो हाम्रा हाम्रो रुपियाँ पैसा है केहोरो खर्च गर्थे तो हाम्रो हाम्रो रुपियाँ पैसा हा केहर प्रयोग करला बाटी त कैका जब हाम्रा लेखा जोखा धर्बी हाम्रा सहज हाम्रा खर्च विवरण है हेरका थाहा गर्छे यीसे हाम्रा कमाइल हाम्रा रुपियाँ पैसा है कुन हेराइसे हेरति कैका सहज थाहा गर्छे क्रिस्चियन मनै हुक्रा एकदम रहस्यक बात परमेश्वरका वचन से बुझल बाट कि पैसाक शक्ति चाहिँ खर्च कैन शक्ति चाहिँ नै हो व्यापारिक नीति चाहिँ पैसा है खर्च गर प्रथा कना हुई था ऊ चाहिँ गलत हो पैसा सही शक्ति कलक पैसा से पैसा कमैना हो इन और मेर से कह बेला अपना पक्ष में हो के ध्यार पैसा कमैना हो तर विश्वासी हुकरा आकर विरोध करता का करे कि हरेक चार्ज हमन दिहल बा ताकि हमारा परमेश्वर का महिमक लागि आकर व्यवस्थापन करी वो से हमार मुख्य उद्देश्य चाहिए हमार लाग ध्यार कमैना नहीं हो तर हमारे प्रयोग करते क्रम में और जहां मजा प्रभाव पर्ना हो ताकि ऊ मनै हुक्रा ख्रिस्टमा आइसकेका मनै हुक्रा परमेश्वरमा धन्यवादी हुई अब विचार गरी मनै हुक्रा परमेश्वरमा धन्यवादी हुई कि नै हुइकन बाख हेर्न एकदम सजिलो तरिका हो ओ ख्रिस्ट येशूमा पहिला जिम्मेवारी हा ओकरा मजासे पूरा कर कि नै गर्छु त ऊ बाख हेर्न एकदम सजिलो तरिका चाहिँ हुक्रा परमेश्वरमा देना भेटी देना आराधना चाहिँ ओकनक परमेश्वर है कुन प्रकारले लेला बाटकना आस्था जनाइ यदि कौनो मन यहाँ परमेश्वरमा देना काम नै करत कलसे ऊ बाट से यह प्रमाणित हुआ कि ऊ मन यहाँ विश्वासमा कमजोर बा कि त ऊ मन यहाँ के विश्वासै नै हुचिस आज ध्यार मने हुक्रा ओकरा रुपियाँ पैसा है सही काममा प्रयोग गर्न नै सक्था ओ मै आग्रह गर्न चाहन्छु कि हरेक विश्वासी मनै हुक्रा हमार भौतिक चार्ज हा आर्थिक चार्ज हा एकदम होसियारिक साथ चलाइ पर्थ एकचो विचार करी कौनो मन यहाँ 1000 रुपियाँ कमाइल कला सेवाकर 10% 100 रुपियाँ परमेश्वरमा दशांश आना यी मन यहाँ एकदम कमजोर गरीब वाकर ध्यार जिम्मेवारी बाटिस रफे परमेश्वरमा अपन दशांश लेकर आए एक विश्वासी यह काम द्वारा विश्वासमा बहरना काम हुई था अवश्य फिर जब ध्यार पैसा रही कलसे जब ध्यार चार्ज रही कलसे ध्यार चार्ज हाँ परिपूरक का काम कर सकती था ओ परमेश्वर का राज्य में ढ्यार गरीब दुखी हुकन दिया ओ हुकना बीच में काम कर सकती था यदि कौनो मनैया थे एकदम ढ्यार धन सम्पत्ति कमाए ओ आकर 2-3% के लिए परमेश्वर में आनल कलसे ओ मनैया एकदम दान से के लिख दिया ओसिन मनै हुकन मार प्रश्न काबा कलसे ओ मनै हुकन विश्वास जाति खोटा यदि कौनो मनैया परमेश्वर में अपन भौतिक सम्पत्ति आना निश्चयकत कलसे ओ मनैया जाति का विश्वासी नै हुई त ओ मनै हुकरा ओसिन विश्वासी नै हुई त देखावटी विश्वासी हुई त यदि अपना जातिक रूप में येशु है जन्मी कल से वहां अपना मन होकर मुक्ति के लाख आन ली करना बाट हाँ जन्मी कल से और संसार भर परमेश्वर का राज्य अपना सहयोग करक ठनवी कल से और सहयोग के कारण जन्मी कल से अपना वहां दान से देना बात अथवा दान से देना वाला मनैया नहीं बन अपना वहां राज्य विस्तार में एक सहयोगी बना सक भी यदि अपना नई देवी कल से अपना असल भंडारे नहीं बीती एक पद्मासी का कथा तुरहा हमन परमेश्वर का ख्रिस्त का सेवक समझा पर था हमन परमेश्वर का रहस्य बात प्रकट करना जिम्मा दे गयल बा हमरा रहस्यमय बात बटवायल रहा का परमेश्वर अपना भौतिक चार्ज नहीं देला जोन चार्ज हाँ अपना अमीन समरला बाकी बात महीन योसेफ का बात है याद दिहाय जुन बात उत्पत्ति 39 अध्याय में बताएल बा आई मई सबको जनक लाख पढ़ चाहब यहाँ 80 के लिखल बा वह ओर से वहां के निगाह योसेफ के ऊपर रहा योसेफ है हूँ कहार सेवा सुसार करत ओहू कहीं अपन घर मुख्य कामदार बना कर वो कहीं अपन थे रहल सब चादक जिम्मा वहां देला उ अपन घर ओ अपन थे रहल सब चादक मुखिया बनेला ओ बनाएल समय थे से परमेश्वर हूँ कहार खातिर मिश्रिक घर में ध्यार आशीष देला एकदम मजा बात त यो हो कि योसेफ कमैया रहला तर फे परमेश्वर उहिना आशीष देला का कर कि ज्या चार्ज दिहल रहा उ चार्ज में एकदम बुद्धिमान तरीका से वाकर सदुपयोग योसेफ करल रहा ई बातक विकास यहाँ हुई ओ ई मेरिक तरीका चाहि आज हमरा हरेक विश्वासी मने हुकरा करा पर्ना बा परमेश्वर देला हरेक चार्ज हमरा लिह नै सक्थी ओ वाकर सदुपयोग कर नै सक्थी वो वर्ष क्रिस्चियन हुकरे हमरा कुछ चार्ज कर नै सिक्थी हमरा मजा से सदुपयोग कर नै सिक्थी खाली खर्च खर्च के लिए करथी भौतिक चार्ज में हमार खर्च हुई था जुन चाहिँ हमार ध्यार महत्व रह जीवित परमेश्वर भंडा हमरा वाका आराधना करथी वाका में बड़ी ध्यान दे ठीक से ऊ चाहे एक मूर्ति पूजा हो कहीं धर्म संस्था मन बताए यदि अपने एक सच्चा विश्वासी हुई कल से अपना परमेश्वर भौतिक परमेश्वर नहीं हुई कहीं का अपना बुझा पड़ता असीन काम विश्वासी मन हुकर नहीं करता ई चाहे एक खेल असक एक विश्वासी मने अपन पैसा भौतिक चार्ज में फाकर नहीं पड़ता
हमरा हमार विश्वास साँचो परमेश्वरमा धरा पर्था। उहाँ हमन ज्यादिहल बाट उक चाज हाम्रा एकदम मजासे मिलैन बारेमा हेर पर्था। खेलवाड ठन्न बात चाहिँ एक व्यवस्थित बिना बात नै हो। यी चाहिँ बाचा हाँ ओ प्रगति हाँ बेकार ठन्न हो। ओर से खेलवाड नै कैना हो। काकरे कि परमेश्वर महिन्देलक चाज हमें बेकार जाए नहीं दी हम। हमरा वागर एकदम मजा से व्यवस्थापन करी कहीं वहां हमन हमार जीवन से चाहता ये बात हाँ अपना बुझी कहीं मैं कहक चाहता ओ परमेश्वर अपना हाँ देलक चाज हाँ अपना कसी का व्यवस्थापन करती वहां अपना हाँ यीशु मा मुक्ति देला बाटा तर अपना हाँ देलक हरेक चाज पैसा समेत परमेश्वर का आशीष हो। वो वहां चाहता कि उस सब चाज अपना एकदम होशियारी साज बुद्धिमत्ता साज वाकर प्रयोग करे अपना परमेश्वर का डेला चाजक व्यवस्थापक एक भंडारे हुई था अपना से ज्यादा उस सब चाज परमेश्वर अपना हाँ उधारी दे लगा था। इस सब चाज एक दिन हेरा का चल दे जैसा का दूसरो पत्रुस तीन में बताया बा यीशु दूसरो आगमन नहीं हुई सम हमरा या का सदुपयोग एकदम बुद्धिमान तरीका से कहना बा जब प्रभु ही वहाँ हरेक चाजक लेखा हमन से लिए ही और वहाँ देलक हरेक चाज में हमरा कतरा ईमानदार हुई वाकर हिसाब किताब वहाँ करही आज की वचन द्वारा परमेश्वर अपना ध्यान आशीष दिया। आमीन।

0: हुनुहुन्छ होइन, यो कार्यक्रममा जोड दिनुभयो हाम्रो ठाकुरबाबा नगरपालिकाबाट भए गरेका कामहरू, कृषि शाखाले गर्ने गतिविधिहरू होइन, आफ्नो महत्वपूर्ण सुझाव किसान समक्ष पुर्याउने यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद।
1: अपना उकरा अबर रेडियो टाइगर 99.2 MHz बर्दिया से रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन्टी बाटी है। यह कार्यक्रम रेडियो टाइगर नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र संघके मिलकर तैयार पर्नक हो।
2: अब हाम्रा एकजी कृषि सम्बन्धी छोटकरी मन गतिविधि सुनी।
3: आप कृषि बुलेटिन के पाला कृषि अनुसंधान परिषद जारी करल बुलेटिन। बुलेटिन के अवधि साउन 29 गते से भटौ 4 गते सम्म। मनसून सक्रिय रहला कुर्से धानबाली लगेला क्षेत्र में पानी का व्यवस्थापन संग रोग किरा का नियमित निगरानी कर कृषि विज्ञ सुझाव दिहल बाट। यी अवधि में धान बाली का लाग मल व्यवस्थापन चापात नियंत्रण तथा रोग किरा व्यवस्थापन विशेष ध्यान दिया पर्ना कृषि मौसम सलाह बुलेटिन में जनागेल बा। एजोलाह हरियो मलको रूपमा प्रयोग गरी धान खेतीमा हरियो मलको रूपमा तयार मिलक एजोला प्रति कठा 20 किलो या प्रति रोपनी 30 किलो का दरले प्रयोग गर सकी। एजोला वृद्धि करकला कम्तीमा 10 दिनसम्म खेतोमा 5 से 10 सेन्टिमिटर गहिराईसम्म पानी धर्ल रही। पानी सँग एजोला भूकेन जैनी देखला केन ध्यान दी। एजोला हना धान का पहला निकैना प्याला मन माटी में मजा से न मिलाए कृषि विज्ञान का सुझाव पातीन। मल व्यवस्थापन में ध्यान दी। धान लगेलग 20 से 25 दिनसम ऐना बुट्टा हना समय मन नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद सिफारिश करलक माता अनुसार यूरिया टप कर सिक्बी। यूरिया विकल्प के रूप में नानो छोल यूरिया 4 मिलीलीटर प्रति मिलीलीटर पानी में मिलाकर पूरा भिजना कई कहा छिट सिक्बी। टप्रेस कर सिकलक पाच कमती में 24 घंटासम खेतों में पानी बह नाटी। झारपात नियन्त्रण गर्न आदेला धान चिटलाग 15 से 25 दिन भित्र झारपात व्यवस्थापन विशेष ध्यान दिए परत। बिस्माई रिबेक सोडियम 10% एमसी 25 लिटर पानी मन 12 मिलीलीटर का दर लेखन प्रति रोपनी वा 70 लिटर पानी मन 8 मिलीलीटर का दर लेखा प्रति कठा प्रयोग कर सकना बुलेटिन जनाइल बा। उसई का औषधि प्रयोग कर बेर खेतों में छिपछिपे पानी हुईलक अवस्था में फ्लैट फैन नोजल प्रयोग कर सुझाव देखेल बा। लाइन में लगेला खाना में निकाय बेर कोनो विदर का प्रयोग कर सक जाए। धानमा रोग र जोखिम बढ्न सेक्ना हुलक कोर्सिन निगरानी गर परत। धान लगा सेक्ला 2-3 हप्ता पाछ खेतोमा लगातार पानी जम्ती रह बेर फेरि कुन्हा रोग लागा सेक्ना हुलक कोर्सिन नियमित अवलोकन गर परत। रोगी बिबुरहन खार्कन नष्ट गर्न हो अर्को फुलक ठाउँमा जमलक पानी हन निकाल सुझाव दिएल बा। उसैको बुलेटिन आवश्यक अवस्थामा बेबिस्टिन 2 ग्राम मिली प्रति पानी मन मिलाकन 8-10 दिनका फरक मन 2-3 फेरा वा भिजना गरी छिट परत। गबारो ओ पात बिरुवा किरा कसिक नियन्त्रण गर्न धान खेतीमा गबारो किराका कारण बुवाक मुना समस्या आइसक्ना हुलक कोर्सिन नियमित अनुगमन गर पर। खेतोमा 5% मृत बुट्टा वा प्रति किराका फुलक एकठो चुप्पा अथवा प्रति मिलिमिटर एकठो वयस्क किरा देखपरलक पाछ केल व्यवस्थापनका उपाय अप्नाइना बुलेटिन सुझाव दिहल्बा। पातका टुप्पा मन रलक अण्डा फेन अवलोकन कई कन्ह नष्ट करा। धानमा पात बिरुवा किराका प्रकोप हुलक किराका लाभा हुलक पटिहन चिरका फेन नष्ट कर सक जाए। धान हन कटाह लठी लेक हो डौरी लेक फेन लाभा हन नष्ट कर सक जाए। प्रकोप ढेर हुलक मात्रामा सिफारिश गर्गेलक विषादी प्रयोग गर परत। पटेक फेदरी डडुवा अर्थात सिट ब्लाइट मसिन जोगाइ सक जाए। धान बाली मन पटेक फेद मन डडुवा अर्थात सिट ब्लाइट रोग जोखिम देख पर्लसे सिफारिश गर्गेलक मात्रामा नाइट्रोजन सँग फसफरस वा पोटास मल प्रयोग गरेर सुझाव देखेलबा। रोगका प्रकोप भर्लसे एली डाइमाइसिन 2 मिलिलिटर प्रति लिटर पानी मिलाकन सक्कु बोट बनान भिजना कई का 10 दिन का फरक में 3-4 फेरा छिट सक जाए। अब धान बाली

0: किसान उनका लाग मुख्य सन्देश अब धान बालीमा न पानी जम्ना अवस्था झारपात हो रोग किराका नियमित अनुगमन कर पर्ना सबसे महत्वपूर्ण बाध्य मल तथा विषादी प्रयोग गरेर कृषि प्राविधिक सल्लाह हो सम्बन्धित बालीका लाग सिफारिस गरेक मात्र पालना गर पर्ना बा कुछ दिन यहाँ लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा साताका शुरूआतमा कुछ स्थानमा न मध्यम तथा अन्त्यमा मध्यम वर्षा हुन सम्भावना बा साताका शुरूआत मध्यममा एक दुई स्थानमा न भारी वर्षा तथा मेघगर्जन चट्याङका सम्भावना रहेकोले सतर्क रह सुझाव दिएको बा किसानहरूका धान खेतमा न एजोला प्रयोग उचित पानी व्यवस्थापन तथा गोडमेलमा न ध्यान दिनसँग धानक रोग किराका नियमित अनुगमन तथा कृषि अनुसन्धान परिषद सुझाव दिएको बा मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि निशुल्क 11:55 हो कृषि तथा पशु पक्षी जिज्ञासाका लागि 11:35 सम्पर्क कार्यक्रम अपनाउन र बुलेटिनको बारेमा जानकारी लिन सक्ने बाटी
1: कृषि औ पशुपालन सम्बन्धी जिज्ञासा केलक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदकै पैसा नैलग्न नम्बर 11:35 हरेक सोमबार सन्ध्याकै 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म फोन गर सक्दै
0: अब हाम्रा सुन्टीबाटी कृषि विशेष रेव कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि कार्यक्रमका पुछारमा आशिकली आप पाला मिल्बा हमार प्रश्न अपना जवाब प्रश्न असिन्बा
2: रासायनिक युरिया मल के सट्टा मन कौन मल प्रयोग गर सिक्जाय प्रश्न फेक फ्यारा युरिया मल के सट्टा मन कौन मल प्रयोग गर सिक्जाय
0: एसएमएस मसिना उत्तर पठाका सहभागी बन सिक्दी यी प्रश्नके उत्तर अपनाउन जनलवाती कलसे 98583309 आफ्न नाउँ ठेगाना सहित एक हप्ता भित्र एसएमएस मसिन उत्तर पठाका सहभागी बन सिक्दी सही उत्तर पठाइलक हुकनसे एक जहान गोला पठासे विजेता छानका कार्यक्रमके तर्फसे 1 प्रतिशत
2: हाम्रा पुछलक प्रश्न सही जवाब दिन विषयमा हाम्रो पुछल प्रश्न रह राष्ट्रिय धान दिवस कहिया मनाजाय याकर सही उत्तर रह असार 15 गते यी प्रश्नक उत्तर ठ्यार जनसंग्रहण लिखन पठाइल रह यी मध्ये मसिन एकजना हाम्रा गोला प्रथा मसिन विजेता घोषणा गरल बाटी उहाँ हुई त ठाकुर बाबा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का दिल्लीराज उपाध्याय उहाँ चाहिँ गोला प्रथामा चाहिँ विजेता भए सफल हुनबाट दिल्लीराज उपाध्याय हन हार्दिक बधाई बा पुरस्कार के लाग अपन एक अखर भित्र आफ्न परिचय खुल्ना कार्ड लेखन टाइगर एफएम का कार्यालयमा सम्पर्क गर सिक्ने बाटी
1: रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन सकल्पा छ अपन मनमा लागल विचार कृषि खेती के विषयमा कोनो प्रश्न ओ जिज्ञासा हुइल कलेसे अपने हुक्र अपन फोन मसे कह सिक्ने बाटी ओ एसएमएस इमेल मसे फेर लेखी सिक्ने बाटी अपन जवाबमा विचार प्रश्न धरक लाग कृषि अनुसन्धान परिषद के पैसा निलग्न फोन नम्बर 11:35 डेलक निर्देशन के आधारमा रेकर्ड कर सिक्ने बाटी पुस्तक रेडियो टाइगर के सम्पर्क नम्बर 0 84 40 31 88 ओ मोबाइल नम्बर 98580309161 फोन कैक रेकर्ड कराई ओ लिखाई फेर सिक्ने बाटी पुस्तक रेडियो टाइगर एफएम @gmail.com मा फेर अपन जिज्ञासा पठाई सिक्ने बाटी
0: लिटा रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि के और ऐना भागमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद के कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन हो कृषि विज्ञ से लिखल सल्लाह सुझाव ऐना हप्तामा अपनाइस एक जिना कृषि सम्बन्धी थ्योर जानकारी सँग और मेरमेरी गतिविधि फैलिएको ऐना भागमा ध्यान हुने नै बा कार्यक्रमका ऐना भाग किन सुन्तिर दि कार्यक्रम सुनके सुझाव सल्लाह फेर्न लिखकर पठिने बाटीकन आशा गर्दी राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र रेडियो टाइगर संघ संघरिया आरटीओ मैटिकाराम फिना दिदाबिटी राम राम नमस्कार

0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आम हिन्डर लक्तिर हटबरा पानी बस्तबेर अस्ति चिमचाम कहाँ रहे त सोचो त लट्ठी ठिक्कन घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छटपटाए लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम डिकुम छ सुरक्षित ठाउँमा सरले नारी बत्ती
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालम बहिया ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लड्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रहिए एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन छ सधैं भाग छ।

0: रुको
1: बे, कौन मर गया?
0: अबे हम सब
2: क्यों?
0: मैच टर्निंग के फाइनल सम्मेलन का डेट प्रीपोन हो गया।
1: कब?
0: वो कल।
2: फोन करेगा?
1: आयशा प्लीज ना।

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।